हेलो नमस्कार रुचि भाई दोस्तों, मैं आरजे टेम साहब सभी श्रोताओं का स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 107.7 पे FM ज़ोए। आज रविवार का दिन है तो आपके लिए हम बहुत सारे मसीह भक्ति गीत लेके आए हैं आज के दिन। आशा करता हूँ कि आपके दिल दिमाग मस्तिष्क और पूरे शरीर को शांत करेंगे और तंदुरुस्त बनाएंगे हमारे मसीह भक्ति गीत। इसी उम्मीदों के साथ दोस्तों मैं इस खंड को शुरुआत करने का इजाजत भी चाहूंगा आप सभी से, और पहला गीत भी प्रस्तुत करने वाला हूं जो कि होगा एच वालरिंगा की आवाज में हम सुनने वाले हैं। पर उससे पहले मैं प्रभु के कुछ वचन पढ़ के सुनाने वाला हूँ आपको। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा।

यदि आप शांत पाना चाहते हैं तो प्रभु परमेश्वर और अपने माता पिता के चरण में शांति मिल सकती है आपको, हम सब जानते हैं। तो इसी के साथ पहला गीत जो अभी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ ये होगा एच बालरिया की आवाज में। गीत के बोल गाएंगे गाएंगे।

एच वन लरुंगा की आवाज में हमने ये मसीह भक्ति गीत सुना था ईसु ने कलवरी पे। तो इसी के साथ यहाँ पे अगला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले हम कुछ प्रभु के वचन फिर से एक बार पढ़ के सुनाने वाले हैं आपको, जिसे यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि ये हुन्ना 8वीं अध्याय और 12वें श्लोक पे, जगत की ज्योति में हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो प्रभु के कहे हुए रास्ते पर यदि हम चलेंगे तो हमारे लिए कभी अंधकार नहीं रहेंगे, क्योंकि अंधकार बहुत ही दूर, जी हाँ, प्रभु की वचन सुनते ही दूर हो जाते हैं। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत प्रस्तुत करने का समय हो चुका है फिर से एक बार, जो कि होगा मेलोडी जी फाना की आवाज में गीत के बोल, तू है पिता परमेश्वर।

तू है पिता परमेश्वर, गाते हुए मेलोडी जी फान आई। तो इसी के साथ यहाँ पे अगला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले फिर से एक बार मैं आपके लिए कुछ वचन, प्रभु की वचन पढ़ के सुनाने वाला हूँ। लूका 22वीं अध्याय और 19वीं श्लोक पे यहाँ पे लिखा गया है कि फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो जब भी हम, खास करके मैं कहूंगा, कुछ भी खाते हैं तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मुझे लगता है कि यही कारण हो सकता है कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो जब भी हम चीजें करते हैं, अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें की तो संभावना है ही नहीं, कुछ भी चीजें करने वाले हैं तो प्रभु को हमेशा याद करते रहना चाहिए हमें। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने का समय हो चुका है, जो कि होगा एच वानरिया की आवाज पे। तो गीत के बोल गाएंगे गाएंगे, आइए चलिए सुनते हैं।

Gaengi, gaengi, masi bhakti git, hamne suna tha H wala ringa ki khusurat awaz mein, to isi ke saath, agla masi bhakti git sunne se pehle, aaj ravivar ka din hai, to kuch sub ravivar kehte hue, main aap sabhi ko kuch sabd kehna chahunga, jaise ki aaj kuch naya nahi karna chahte, to bas yehi karo jo tum hamesha se karna chahte the, to हमारे दिन में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि जो हम करना चाहते हैं पर कुछ कारणवश नहीं कर पाते। तो आज के दिन यदि आपके पास कुछ करने का नहीं है तो वही कीजिए जो आप करना चाहते थे हमेशा से। और एक और बात हमेशा हमें याद रहनी चाहिए कि जैसे हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी, क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी, न शिकायत करो न कभी उदास हो, जिंदा दिल से जीने का एहसास है जिंदगी। तो इसी के साथ हम यहाँ फिर से एक बार सुनने वाले हैं एक बार कोंखार मोई की खूबसूरत आवाज़ पे, क्रूस ही तेरा निशान।

तो दोस्तों, अगला गीत जो होगा इस खंड के लिए मेरा अंतिम गीत होने वाला है, पर चिंता मत कीजिए, फिर से एक बार मैं मसीह भक्ति गीतों के साथ लौट के आने वाला हूँ। तब तक हमारा इंतजार कीजिएगा।

सोचा था आपसे विदा लूंगा, पर यहाँ पे एक संदेश आए हैं, तो फिर से एक बार मैं फटाफट पढ़ के आपसे विदा लूंगा। सिजद लिखते हैं, चिबाई आपको भी चिबाई मेरे दोस्त, और हुन मन्नु अम फोत्सले, हमें सुनने के लिए, संदेश देने के लिए शुक्रिया। और अंतिम गीत फिर से एक बार मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होगा एच वालरिंगा की आवाज में, गीत के बोल हे मेरे मन। तो मैंने पहले ही कहा था कि इसके बाद मैं आपसे फिर से जुड़ने वाला हूँ 10:50 पर मसीह भक्ति गीतों के साथ। तब तक सुनते रहे आकाशवाणी आइजोल FM 100.7।

हेलो नमस्कार और चिवाय दोस्तों, मैं आरजू टाइम्स आप सभी श्रोताओं का दूसरी बार स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 107.7 पे FM जोय। अभी के इस भागों में भी मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ मसीह भक्ति गीत। आशा करता हूँ कि जो गीत हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे आपके दिल दिमाग मस्तिष्क शरीर को तंदुरुस्त चुस्त करेंगे। इस उम्मीदों के साथ दोस्तों मैं इस खंड को शुरुआत करने का इजाजत भी चाहूंगा आप सभी से। पहला गीत भी बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस बार जो है हम गीत मंडली की ओर से बहुत सारे गीत मसीह भक्ति गीत सुनने वाले हैं। तो पहला मसीह भक्ति गीत जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ ये होगा बोंकोन मसीह संगति की ओर से गीत के बोल हमें सब कुछ वो देता। और गीत सुनने से पहले मैं, आज रविवार का दिन है तो इसके बारे में कुछ जानकारियां भी देना चाहूंगा कि एक रविवार है जो रिश्तों को संभालता है, बाकी दिन तो जिम्मेदारी की किस्तों में संभालने में ही खर्च हो जाता है। हम सब जानते हैं बाकी दिन छुट्टी नहीं होते तो काम में व्यस्त है रहते हैं हम, अपने परिवार अपने मित्र जनों के साथ सब वक्त बिता नहीं पाते। पर एक ही दिन ऐसा है कि सप्ते में रविवार का दिन जो कि छुट्टी का दिन होता है तो हम सब अपने व्यस्त काम से छुटकारा लेकर अपने प्रियजनों अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। तो इसी के साथ पहला मसीह भक्ति गीत हमें सब कुछ वो देता बोंकोन मसीह संगति की ओर से आप सभी के नाम।

इस खंड का पहला मसीह भक्ति गीत मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। बोंगोल मसीह संगति की ओर से हमें सब कुछ वो देता। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत फिर से एक बार मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत होने वाला है दोस्तों, थोड़ा इंतजार कीजिएगा इस गीत के लिए। उससे पहले यहाँ पे हमारे दोस्त हितेंद्र दास आसाम से, सोनवील कुदाली आसाम से क्या लिखते हैं। गुड मॉर्निंग आरजे जी, आपको भी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, और आपके पूरे परिवार और मित्रजनों को हमारी ओर से गुड मॉर्निंग। हितेंद्र जी दिन भर सुनेंगे इस उम्मीदों के साथ, अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए और आपके पूरे प्रियजन अपने रिश्तेदारों के लिए भी प्रस्तुत करना चाहूंगा, और आकाशवाणी आइजोल FM जॉयस और 107 के साथ जुड़ने वाले सभी श्रोताओं के लिए। आज किसी भी कारणवश यदि गिरजाघर नहीं जा पा रहे हो तो आज के लिए हम आपके लिए बहुत सारे मसीह भक्ति गीत लेके आ रहे हैं, तो ऐसा महसूस कर पाएंगे कि आप गिरजाघर में ही है। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सिंगा वैंग बी एल मसीह संगति की ओर से, गीत के बोल तेरे पास।

अभी जो मसीह भक्त गीत आपने सुना था, ये था चिंगावेंग बियल मसीह संगति की ओर से तेरे पास यीशुआ। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत फिर से एक बार मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये होगा रमलुन वेंग लाइन नन मिजो क्रिस्टियन फेलोशिप की ओर से गीत के बोल गाओ गाओ।

अब यीशु मसीह भक्ति गीत आपने सुना था, ये था भोंकोन मसीह संगति की ओर से। जी हाँ, इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ फिर से एक बार सिंह वेंग बेल मसीह संगति की ओर से होगा। पर उससे पहले यहाँ पे एक संदेश आया है पढ़ने को, तो मैं पढ़ के फिर से एक बार सुनाने वाला हूँ। हमारे दोस्त दुर्गेश नागानपुरे लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आरजे, नमस्कार। नमस्कार आपको भी मेरे दोस्त, हैव ए नाइस डे, आपको भी शुभ दिन बीते। और जितने भी लोग आपसे आपके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के नाम अगला मसीह भक्ति गीत में प्रस्तुत करने वाला हूँ। दुर्गेश नागनपुर और फैमिली ग्राम जसवादी डिस्ट्रिक्ट खंडवा मध्य प्रदेश से। इतनी दूर से आप हमें संदेश भेजते हैं, हमें सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्त। और चलिए सुनते हैं चिंग वैंग बियाल मसीह संगति की ओर से तेरी स्तुति।

दोस्तों, अगला मसीबख्त गीत जो होगा इस खंड के लिए हमारा अंतिम गीत होने वाला है, और मैं आपसे फिर से जुड़ने वाला हूँ बहुत ही जल्द दिन में मिलेंगे। आप लोग अपना नाश्ता कीजिए भरपेट। जी हाँ, आराम से गपशप करेंगे, बहुत सारे मसीबख्ति गीत सुनेंगे। मैं फिर से लौटने वाला हूँ 12:50 पर मसीबख्ति गीतों के साथ। तब तक सुनते रहेगा आकाशवाणी आइजोल FM 100.7। और अंतिम गीत जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होगा फिर से एक बार छिंग वेंग मसी बियल मसी संगति की ओर से गीत के बोल भारत। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं अभी तक, सुबह से कहेंगे मिजो हो या अंग्रेजी हो या हिंदी, सभी गीत सुन रहे हैं। आप सभी के नाम गीत में प्रस्तुत करना चाहूंगा। और अपना ख्याल रखिएगा, दिन में ज्यादा बाहर मत निकलेगा, आज का मौसम बहुत ही सुहावना है। सुहावना के साथ साथ बारिश का मौसम भी है, तो बाहर निकलेंगे तो छतरी साथ में रखिएगा, बहुत ही काम आएंगे आपके लिए। तो इसी के साथ इस खंड के लिए अंतिम गीत छिंग वेंग बियल मसी संगति की ओर से फिर से एक बार भारत। और मिलते हैं 12:50 पर। तब तक सुनते रहे आकाशवाणी आइजोल FM 100.7। और इसके बाद आपसे जुड़ने वाली है, जी हाँ, आपकी इंग्लिश आरजे बहुत ही प्यारी सी सुरीली सी आवाजों के मालकिन कहेंगे, उनका साथ भी अच्छी तरह से दीजिएगा। मैं अभी के आपके लिए आपसे विदा लेता हूँ।

हेलो नमस्कार और चिबाई दोस्तों, मैं आरजे टैम साहब सभी श्रोताओं का तीसरी बार स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 पे FM जोवोय। दोस्तों, इस तीसरे भागों में भी मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ मसीह भक्ति गीत। आज रविवार का दिन है तो हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, रविवार के दिन, रविवार वो समय है जब दिल की किताब के पन्ने पलटो और कुछ नए रंग भर दो। तो आज के दिन घर बैठे आराम करने का दिन है, अपने परिवारजनों, अपने प्रियजनों के साथ, और इसी के साथ साथ प्रभु की स्तुति करने का भी दिन है। बहुत काम कर लिए हमने सप्ते भरे, है ना, तो बहुत सारे बुरे कर्म भी किए होंगे, बहुत सारे अच्छे कर्म भी किए होंगे। प्रभु से माफी मांगना, उनको धन्यवाद देना, आज के दिन हमारे लिए बनता ही है। तो इसी के साथ मैं इस खंड का शुरुआत करने का इजाजत भी चाहूंगा आप सभी से, और पहला मसीह भक्ति गीत जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ ये होगा मिशन वैंक और फ्रंट मसीह संगति की ओर से गीत के बोल, गुनहगारों को देने सहारा। गुनहगार जितने भी है, जितने भी गुनाह किया है, उन सभी को प्रभु क्षमा करते हैं, हम सब जानते हैं, पर हमें एक और बात याद रखनी चाहिए कि जो हम गलतियां करते हैं उसको ना दोहराइए। एक बार गलतियां हो जाती है, क्षमा की जा सकती है, पर दो तीन बार गुनाह करना, गलतियां करना, उसको क्षमा करेंगे तो आदमी कैसे सुधरेंगे, है ना। तो इसीलिए एक बार गलती करें, माफ मांगे और दोबारा ना करें। तो आइए चले सुनते हैं फिर से एक बार, गुनहगारों को देने सहारा।

प्रभु की स्तुति महिमा बढ़ाने के लिए वाइवाकॉन पास्टर बीएल गीत मंडली गा रहे थे आजा प्रभु। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये फिर से होगा एक बार मिशन वैंकोवर मसीह संगति की ओर से गीत के बोल। हम गीत गाएंगे।

हम गीत गाएंगे, सबको सुनाएंगे। मिशन वे गौशाला मसीह संगति गा रहे थे इस मसीह भक्ति गीतों के बाद। अगला मसीह भक्ति गीत हम सुनने वाले हैं फिर से एक बार सिनोद मिशन कोर की ओर से, सदा पवित्र। ये गीत मुझे बहुत ही पसंद है। जब भी ये गीत मैं सुनता हूँ तो मुझे कुछ अलग ही दुनिया में लेके चलता है और मेरे मन को सुकून शांति भी देता है। तो इसी उम्मीदों के साथ आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। इस गीत को सुनने के बाद मैं आप सभी के नाम प्रस्तुत करना चाहूंगा और जितने भी लोग आकाशवाणी आइजोल एफएम 107.7 के साथ जुड़े हैं किसी भी माध्यम से, रेडियो से हो या कार टेपो से हो या फिर मोबाइल ऐप से। जी हाँ, मोबाइल ऐप्स, मैंने बिल्कुल सही कहा। आप दुनिया के किसी भी कोने से भी आप हमें सुन सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं यदि आपके पास इंटरनेट सुविधा हो तो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाना होगा, ऑन एयर ऐप्स डाउनलोड करके आपको एफएम जॉय टाइप करना होगा, तो वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं कहीं से भी। तो आइए चलिए सुनते हैं सुनर मिशन कोर की ओर से फिर से एक बार सदा पवित्र मसीह भक्ति गीत।

अभी जो मसीह भक्ति गीत सुन रहे थे, ये मसीह भक्ति गीत अभी के इस खंड के लिए हमारा अंतिम गीत था। तो मैं आपसे मिलूंगा 2:35 पर फिर से एक बार मसीह भक्ति गीतों के साथ, और मेरा आखिरी खंड भी होने वाला है। आशा करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे उस समय तक। तब तक आप सुनते रहे आकाशवाणी आइजवाल FM 107.7। अभी के लिए आरजे टाइम्स आपसे विदा लेता है, मिलते हैं 2:35 पर।

हेलो नमस्कार और चिवाय दोस्तों, मैं आरजू टाइम्स आप सभी श्रोताओं का हिंदी के चौथे भाग और आज के हमारे इस पहले चरण के अंतिम भागों में भी स्वागत कर रहा हूँ। और आप सुन रहे हैं 107.7 पे FM जवॉय। दोस्तों, 3 बजे तक मैं आपको मसीह भक्ति गीतें सुनाता जाऊंगा, अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि समय बहुत ही कम रहा हमारा और आपका, क्योंकि 3 बजे मैंने कहा था, तो अभी 25 मिनट ही बाकी है। तो पहला गीत जो अभी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होगा द विश्वासी की ओर से। गीत के बोल होंगे प्रभु परमेश्वर, और ये गीत जितने भी लोग किसी भी पीड़ावश कारण कहेंगे ही, अगर आप किसी भी पीड़ा में हो या फिर किसी भी दुख में या फिर किसी भी कठिनाइयों में हो, तो ये गीत आपको शक्ति देंगे इसी उम्मीदों के साथ। चलिए आइए सुनते हैं प्रभु परमेश्वर।

प्रभु परमेश्वर की भलाई के बारे में हम क्या करें, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे दुख दर्द सब समझते हैं, जानते भी हैं और उनका निवारण भी करते हैं। तो इसीलिए हमें उनके गुणगान हमेशा करनी चाहिए, गीतों ने भी यही कहा है। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने का समय हो चुका है। ये होगा पीलन उन्मय और उनकी दलों की ओर से गीत के बोल गुणगान करें।

गुणगान करे मसीह भक्ति गीत सुना था हमने पीर ललन मोया और उनकी दलों की ओर से। इसके बाद समय हो चुका है अगला मसीह भक्ति गीत सुनेगा। ये गीत फरमाइश पर मैं पूरा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ सिनोद मिशन कोर की ओर से। ये गीत मुझे बहुत ही पसंद है और जितने भी लोग सुनेंगे इस गीत को वो भी पसंद करेंगे। इसी उम्मीदों के साथ मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ अभी आपके लिए तू वही प्यार है। और गीत भूपेंद्र नाथ जी, स्वर्गीय भूपेंद्र नाथ जी ने रचा था इस गीत को। आशा करता हूँ कि उनको याद करते हुए और प्रभु की महिमा बढ़ाने के लिए और बढ़ाने के लिए इस गीत को हम आगे लेके जाएंगे। तो आइए चलिए सुनते हैं सिनोद मिशन कोर की ओर से तू वही प्यार है।

वही प्योर सिनोत मिशन कोर की ओर से मसी भक्ति गीत सुना था। बहुत ही खूबसूरत गीत था। मैंने पहले ही कहा था कि आपको भी पसंद आएंगे जितना मुझे पसंद है ये गीत। तो यहाँ पे मैं थोड़े मेजों में कुछ कहना चाहता हूँ कि तू वही प्यार है ती हम जिया तक से मंगाई ना दिख तक से तीखान अगल मतलब थुपई खान इतना नहीं मो पथियन मंगाई नहीं सैफिया थी हर सखो मैया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है और इस गीत ने भी यही लिखा है तू ना थुआ पो खान ये नियांग है एंकिम आई पुन अल्लु बर्ती न हनितानी जो पथियन मंगाई न जो थिन लुंग के सम तो ते मिन सम छत सक्षे न जो देता है सम ngai dam thei na ni te kha pathian ma ngai na ni ti kha ni ta ni tu wahi pyar he jo mere liye mara ta na nun da la kha pathian ini pathian ma ngai na ni ti te kha omari to ye geet mujhe isliye bahut hi pasand hai aasha karta hu ki aapko bhi bahut hi pasand aaya hoga aur roz roz sunenge is geet ko isi ke sath antim geet prastut karne ka samay ho chuka hai jo ki hoga the viswasi ki aur se iske baad main aapse vida lene wala hu bahut jald milenge is umeedon ke sath isi vaade ke sath aaj the time aapse vida le raha hai अपना ख्याल रखिएगा। आने वाले हफ्ते बहुत ही बढ़िया रहे आप सभी का। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेने वाला हूँ। सुनते हैं द विश्वासी की ओर से भूले और भटके।

0: मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया है, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उमते। समय हो रहा है शाम के 4:30 बजे और ये सिलसिला जारी रहेगा 5 बजे तक। और दोस्तों, रविवार की शाम है तो स्तुति गीत सुनना तो बनता है। इस भाग में हम आपको सुनाने वाले हैं पीसी लियांगथा सोनी ललुन सांगे के आवाजों पे गाए हुए कुछ खूबसूरत स्तुति गीत। और फिलहाल वक्त की शुरुआत हम इस खूबसूरत गाने से करने वाले हैं। पीसी लियांगथा ने क्या खूबी कहा है, अब वो बुला रहा है और आंखें खोल, दोनों गाने हम एक साथ ही सुनेंगे।

पीसी रमनी तंग की आवाज में हमने सुना, अब वो बुला रहा, आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्तुति गीत सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कांकती अपा बिल्कुल ठीक ने लिखा है, अर्जुम ते नमस्ते, आपको भी नमस्ते, इला प्ले ले तुरखा र मतुई रियल पार पारिपु में मोते या ngori sai lo omega sangte ya le itan kalane aron tini bahut bahut shukriya ngakte pa bir ko thira पता चल रहा है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और कई लोग भी जुड़े हैं लेकिन हमें मैसेजेस नहीं भेज रहे, तो हम चाहेंगे कि हम आप हमें मैसेजेस जरूर भेजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं आप सभी के लिए सोनी लुनसांगी की आवाज में सहारा मुझको चाहिए।

सहारा मुझको चाहिए, ये था सोनी ललुनसांगे की आवाज में। अगले स्तुति गीत की ओर बढ़ेंगे। ईशु तुम्हें बुला रहा है, सोनी ललुनसांगे की आवाज में ही हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले सीजत ने लिखा है हमें, आज उमते उलुक इल्ती अंगिन कलौ लो मचे हैं जई थे इसी वे हुन पन नुआम फोट्स ले अरंती ने आ नंग निपो नुआम दे उखान हुन निलो मंग दोन ने नंग पो। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे ईशु तुम्हें बुला रहा है सोनी ललुनसांगे, और खासकर ये मैं डेडिकेट करूंगी सीजेट और पा दोनों के लिए।

इसी लानविंग थंग के मनमोहक आवाज में हमने सुना, खूबसूरत है मसी। आगे बढ़ेंगे, केवल 5 मिनट रह गया है, एक और गाना हम सुनेंगे पीसी लानविंग थंग की ही आवाज में। हम सुनेंगे आगे खोल मेरे, और इसी के साथ मैं आरजे ओमते आपसे इजाजत चाहूंगी, क्योंकि समय हमारा गुजर चुका है, फर्स्ट सेगमेंट समाप्त हो रहा है, यानी कि दूसरा भाग जो है वो वापस मैं आपसे जुड़ूंगी बहुत जल्द, बहुत जल्द, यानी कि 6:40 पर मैं आपसे फिर जुड़ूंगी। ठीक, इसके बाद आरजे चामी आपके लिए लेकर आने वाली है वेस्टर्न म्यूजिक डिवोशनल, इसीलिए आप सभी जुड़े रहेगा FM Zoy के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और बार स्वागत है एफएम जॉय पर। आप हमें सुन सकते हैं 100.7 पर या फिर रेस मोबाइल ऐप पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमतेई। समय हो रहा है 6:40 और ये सिलसिला जारी रहेगा 7 बजे तक। और इन मिनटों में हम आपको सुनाने वाले हैं ललचंद पुया एंड पार्टी और डेविड सिंगर्स के गाए हुए कुछ स्तुति गीत। और हम सुनने वाले हैं सबसे पहला गाना जो है मेरे गुना, ललचंद पुया और उनके दोस्तों की आवाजों में।

झुम झुम झुम झुम नाचो रे गीत मसीह के गाओ रे, ये था डेविड सिंगर्स की ओर से। ते आईटीआई ने हमें मैसेज भेजा है, हेलो वार जेतु नई प्ले मेक लाही इंगे अलमिंग ले मुबारक ती छिया कशे थे अरोंती आ ओ मुबारक ती तब खा अल्लाह अनिया ओ असतु ते नन मिलो शिल थे मति आ डेविड सिंगर्स ते जायनी ओ डेविड सिंगर्स। आखिरी गाना हम सुनेंगे और जाते जाते मैं आपको सुनाऊंगी मिका चले लचनपुई और उनके दोस्तों के आवाजों में। इसी के साथ मैं आरजी ओमती आपसे इजाजत चाहूंगी और वापस मैं आपसे जुड़ूंगी सबसे आखिरी खान यानी कि 9:02 पर। जुड़े रहेगा एफएम जॉय के साथ, क्योंकि ठीक इसके बाद आरजे ठीक इसके बाद यानी कि 7 बजे आरजेएमएस आपके लिए लेकर आने वाले हैं मिजो डिवोशनल कोरल सॉन्ग्स। जुड़े रहेगा एफएम जॉय के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उमतई। समय हो रहा है रात के 9:02 और यह सिलसिला जारी रहेगा 9:30 बजे तक। इस भाग में पिछले भाग की तरह ही हम आपको सुनाने वाले हैं हिंदी स्तुति गीत, और हम सुनेंगे संत पीवे खां मसीही संगति जयपुर द्वारा गाया रिपब्लिक वे मसीही संगति जायपोल और एजोल ईस्ट एरिया मसीही संगति जायपोल के द्वारा गाए कुछ खूबसूरत स्तुति गीत। और सबसे पहला गाना जो हम प्रभु यीशु को याद करते हुए सुनने वाले हैं वो है नया जीवन, रिपब्लिक वे मसीही संगति के खूबसूरत आवाजों में।

परिवर्तन यानी कि नया जीवन हमने सुना रिपब्लिक वे मसीही संगति की ओर से, बहुत ही खूबसूरत गाया है। आगे भी हम सुनते रहेंगे, लेकिन उससे पहले दुर्गेश नागनपुरे ने लिखा है, गुड इवनिंग आरजी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्ते आपको भी। और ये इनके जो फैमिली है वो उनके साथ सुन रहे हैं हमें। दुर्गेश नागनपुरे जी हमारे साथ इसी तरह बने रहेगा। हितेंद्र दास का भी मैसेज है, इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी अमार बंधु, आकाशवाणी सारा आमि बाजते पारि ना, नमस्कार आर्य जी, हाउ आर यू, आई एम फाइन। और इन्होंने लिखा है कि आज बहुत बारिश हुई। जी हाँ, यहाँ आइजोल में भी बहुत सारी बारिशें हुई, लेकिन इन बारिशों के बीच भी हम आपके लिए एफएम ज़ोई के साथ जुड़े हैं। तो हम आशा करेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहेगा। अगला गाना प्रभु महान संत विवेकानंद मसीह संगति जयपुर द्वारा गाया।

प्रभु महान चुन प्रवीण था मसीह संगति जयपुर द्वारा गाया हम और आप जुड़े हैं फिल्म जोए पर आपके साथ जुड़ी है आज एवं तेई रात के 9:10 हो चुके हैं 9:20 और है हमारे पास कुछ और गाने हम सुनेंगे और जैसे कि हमने बताया रविवार की रात है तो हम स्तुति गीत ही सुन पाएंगे बहुत ही खूबसूरत और भी स्तुति गीत हम सुनेंगे और अगला जो हम सुनेंगे वो है आइजोल ईस्ट एरिया मसीही संगति जयपुर द्वारा गाया ले चल।

दोस्तों, ये था यावे और हमने सुना चंद पुईवेन खां मसीही संगति जायपोल द्वारा गाया। अगले गाने है कि और बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ओमे गा सांगते का मैसेज है, तू ना जे ड्यूटी ही ओ त्यांगा हेन आई प्ले टूर ते विकुम ते ने निंतान ले और दिने ओ कलो छारे ओ भाई खान छारे लो मिला कलो छार जाऊ वेके अथुम लुतुका तो वन तो वन कछारे वेक तलाव अनि ओ मिलो छते हम दोन्या। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे चुन पुवे थांग मसी संगति जायपोल द्वारा गाया यीशु मसीह।

यीशु मसीह चंद पुवें थांग मसीह ही संग दीजाए पोल द्वारा गाया। इसी के साथ दोस्तों हम आपको सुनाने वाले हैं इस भाग का आखिरी गाना और ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आइजोली सीरिया मसीह ही संग दीजाए पोल द्वारा गाया हम सुनेंगे ले चल। और इसी के साथ मैं आजी उमतिया आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी बहुत जल्द अगले हफ्ते। तब तक ख्याल रखिएगा अपना और जुड़े रहिएगा FM ज़ोए के साथ।